0: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइक आवर रेडियो सेल्स ऑन 0116 471 0697 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk.
1: Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Laika Radio.

मुंबई। सुना था यहाँ आदमी पूरी जिंदगी अपनी किस्मत स्लो ट्रैक से फास्ट ट्रैक लाने में निकाल देता है, पर ढाई घंटे में मेरी किस्मत ऐसी स्लो ट्रैक से फास्ट ट्रैक पर आ जाएगी, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। सजा मजा बन जाएगी, ये भी कभी सोचा नहीं था। लास्ट लोकल क्या छुट्टी, साला किस्मत पटरी पर आ गई।

0: कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सही कहते हैं।
1: ये है लाइका रेडियो।

0: Breaker Radio. Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
1: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
2: This is the largest commercial Asian radio network in the UK. Subscribe to the Leica Radio YouTube channel by searching Leica Radio UK.

0: Laika Radio.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाए तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574-8410। दैट्स 8574-8410। साउथ हॉल ट्रेवल, आई होप प्रोटेक्ट did.

चार गावे को साज करे तनखे, गावे को जी लै फिर दे, गावे को जापे दिसे दूर, गावे को एक है हादरा हदूर।

असंख मलेच्छ मल भक्खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

महत जुग जुग एको वेश उगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध।

जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान नदरी करम पवै निशान कच पकाई उथे पाए नानक गया जापे जाए धर्म।

0: குட் மார்னிங். स्वागत है संगीत प्रेमियों का मनोरंजन की दुनिया में। लाइका रेडियो नेटवर्क पर लाइका गोल्ड के कार्यक्रमों में मनोरंजन का पड़ाव। माय नेम इज रवि शर्मा एंड आई एम विद यू टिल 1 o'clock दिस आफ्टरनून एंड वांट टू से थैंक्स टू काजल, शी विल बी बैक टुमारो मॉर्निंग। सोमवार वर्ष 2026 के सितंबर महीने की 21 तारीख। वक्त कितनी तेजी से दौड़ रहा है, हमें पीछे छोड़ रहा है। कदम से कदम मिलाकर चलेंगे भाई वक्त के साथ। दिल में है एक बात, कहूं तो करार हो, चल और थोड़ा साथ अगर ऐतबार हो। मैं बस इसी ख्याल से मिलने गया उसे, शायद उसे भी आज मेरा इंतजार हो। मैं आ गया फरेब में एक रुत के दोस्त यूं, पतझड़ के बाद आई है शायद बहार हो। घर मान जाए तो ये समझना हुआ नहीं, दिल मानता नहीं है गर दिल में प्यार हो। दौलत का, मोहब्बत का, अकीदत का, हुस्न का, अच्छा नहीं है दोस्त किसी का खुमार हो। ये दिल मेरा है अब भी चल मुंतजिर तेरा, आ लौट के आ दिल, आ लौट के आ दिल पे अगर इख्तियार हो।
1: Like a radio. Let's return to the biggest hits back to back. This is Like a Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Like a Radio mobile app and listen wherever you are in the world. Refreshing Asian hits across the Like a Radio network.

0: Asha Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: Rafta rafta ho meri hasti ka sama ho gaye.
2: Aapka naya station, Laika Radio Ghazals, bahut jald aa raha hai.
3: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
0: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
4: Very good morning. भाई गीत सुनवाएंगे हम आपको जरूरी ये प्रायोजित गीत लेकिन उससे पहले मैंने महसूस किया है कि व्यक्ति का मशीनीकरण हो रहा है. व्यक्ति का क्या? हर काम का मशीनीकरण. मतलब we are depending too much on machines. हर काम मशीन से ले रहे हैं. लोगों की नौकरियां जा रही हैं इस चक्कर में. भाई पहले हम पे करने के लिए लाइन में लगते थे, फिर जब टिल पे जा करके और टिल पर खड़ी किसी खूबसूरत लड़की से दो चार बातें भी फोड़ लेते थे. नहीं, मेरा मतलब है कि हालचाल राजी खुशी भाई है. और जब वो मुस्कुरा के कहती अरे रवि शर्मा, क्या बताएं साहब, दिल में तड़का सा लगता था. लेकिन अब कार्ड लेके जाओ जी, पे बाई कार्ड, और मशीन के सामने से गुजरो, मत्था पच्ची करो, सब कुछ आपको ही करना है. तो उनकी तो तनख्वाह बच गई, अपना एक्स्ट्रा समय लग गया, और कोई बात करने वाला करने वाली मतलब आजकल साहब मशीनों से. आप पहले ना चाय वाय जो है वो बनवा के पीते थे, सामने वो आपके सामने बनाता था, बनाते हुए बातें करता था और कप बाद में धोता था. भाई कितने काम थे. अब मशीन में कॉइन डालो, चाय निकालो, अब शिकायत भी नहीं कर सकते उसमें. तो भाई चाय में चाहे मीठा कितना भी हो फिर भी शिकायत कर दो, मीठा कम है भाई, दूध कम है भाई, थोड़ा और डालो. तो इस तरह से ना मतलब बातें फोड़ने का अलग ही मजा होता था. वैसे आपको बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहते हैं भाई बचपन में चाय बेची स्टेशन पर. बेची तो हमने भी थी लेकिन हमें तो किसी ने प्रधानमंत्री नहीं बनाया. अरे चपड़ासी बना दो प्रधानमंत्री का यार, किसी मंत्री का नहीं. चाय बेचना बेकार गया लेकिन अनुभव जो कमाया, अरे वाह साहब. स्टेशन पर चाय बेचने का अंदाज, एक वो ठेली होती थी, एक खंबे के सहारे खड़ी थी, और भाई थी तो वो देवराज की. हम तो उसके लिए काम करते थे थोड़ी बहुत देर के लिए, और रात को जब उसे नींद का झोंका आता भाई वो सो जाता तो वो हमारे हवाले कर देता था उस रेहड़ी को. हालांकि जब ट्रेन आती थी तो उसकी आँख खुल जाती थी. और साहब जब ट्रेन आती थी तो रात को 1 बजे 2 बजे उसकी आवाज़ नहीं निकलती थी. वो आवाज़ लगाता था चाय बेचने के लिए लेकिन आवाज़ कैसी निकलती थी, चाय भाई चाय नहीं चाय चाय. लेकिन साहब सुबह जब वो नहा धो के तैयार होके आता था ना, और रेडी अपनी लगाता था, अगरबत्ती जलाता था, और भाई भट्टी जो है तैयार होती थी, उस वक्त ट्रेन आती तो उसकी आवाज़ में पता नहीं कहाँ से ताकत आ जाती. फिर वो ऐसे बोलता था, अच्छा

देखिए साहब, इतना चाय के आसपास रह के भी मैंने चाय की आदत नहीं डाली। यकीन मानिए मुझे चाय पीने की आदत नहीं है। हालांकि स्टाफ में लड़कियां कई बार बना के दी जाती, चाय दी जाती हैं, कॉफ़ी भी दी जाती हैं, मैं उनका मन रखने के लिए पीता ज़रूर, लेकिन एक दो घूंट लेकर के फिर मैं छोड़ देता हूँ। उन्हें नहीं बताना वरना कहीं नाराज़ ना हो जाए। घर में भी पत्नी चाय बना के देती है, क्योंकि वो खुद पीती है तो मेरे लिए भी बनाती है। मैंने उन्हें कह दिया कि मैं चाय नहीं पीता हूँ, फिर भी बनाती हैं। अब पत्नी के सामने आप इससे ज़्यादा बोल नहीं सकते। तो उसके भी भाई दो तीन वो, मैंने कहा मैं आप ही की चाय में से एक दो घूंट ले लूँगा। लेकिन साहब ये चाय का इतना चर्चा इसलिए हो रहा है आज कि आज भारत में राष्ट्रीय चाय दिवस है, नेशनल टी डे। बताइए, ऐसे में तो भाई पीनी पड़ेगी ना, तो भिजवा दो, भिजवा दो स्टेशन वाली चाय। रेलवे स्टेशन वाली चाय। अच्छा अच्छा अच्छा चाय। पी लो, ले लो जी चाय पियो, लेकिन कप धो के जाने पड़ेंगे।

0: halwa brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: Manoranjan with Ravi Sharma. Like a radio.
2: तो साहब आज भारत में है राष्ट्रीय चाय दिवस। लोग कहते हैं कि पहले चाय की इतनी आदत नहीं होती थी हिंदुस्तानियों को, और भाई अंग्रेजों को चाय का स्वाद बढ़ा तो उन्होंने लोगों को पहले फ्री में चाय पिलाई ताकि उनको आदत पड़े, और ये आदत जब पड़ जाती है ना साहब, मैं बचा हुआ हूँ, अभी आप पिलाएंगे तो पी लूँगा लेकिन ना नहीं कही जाती है भाई किसी को, मैं किसी का दिल क्यों तोड़े, चाय से रिश्ते जोड़े, चाय पे बुलाया है, शायद मेरी मम्मी के दिल में ख्याल आया है। देखो चाय कितने काम कराती है, चाय पे लोग सौदेबाजी करते हैं, व्यापार चलाते हैं, चाय पे मीटिंग्स होती हैं, चाय पे रिश्ते जुड़ते हैं। लेकिन फिलहाल तो भाई हम खबरों के साथ जुड़ते हैं, समय हो गया है। लाइका रेडियो नेटवर्क, अब आप रवि शर्मा से आज के प्रमुख समाचार सुनिए। जापान में एशियन गेम्स के बीच भीषण तूफान का अलर्ट, 300 उड़ानें फ्लाइट्स रद्द हो गई हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर बरसाए बम, तालिबान ने दावा किया है। ट्रंप से बात होने के बाद बोले यूक्रेनी प्रेसिडेंट जेलेंस्की के बहुत कुछ बदल सकता है। 13 साल की एक चीनी लड़की ने एशियन गेम्स में बनाया नया रिकॉर्ड, तैराकी में जीता गोल्ड मेडल, 13 ईयर्स ओल्ड। और भाई भारत में राहुल गांधी ने कहा अर्पित का परिवार जानता है कि उस मासूम की क्या गलती थी। भाई ये एक केस है, देखते हैं समाचारों में कितना कुछ आज इसमें उजागर हुआ है। पहले ये खबर, रिवॉल्यूशनरी गार्ड की अमेरिका को वार्निंग, कहते हैं कि अगला हमला हुआ ना तो दुनिया देखेगी नए हथियार। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने वार्निंग दी है कि अमेरिका ईरान पर फिर से हमला करता है तो ऐसे नए नए हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा जो दुनिया को हैरान कर देंगे। रिवॉल्यूशनरी गार्ड की स्पोक्स पर्सन हुसैनी मोहबी ने कहा है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो ईरान ऐसे वेपन्स इस्तेमाल करेगा जो दुनिया को हैरान कर देंगे। ईरान ने ऐसे हथियार बनाए हैं और उनकी ताकत बढ़ाई है जिनका इस्तेमाल जंग के मौजूदा दौर में नहीं किया गया है। उन्होंने इन हथियारों को ईरान के स्ट्रेटेजिक हथियार बताया जिनका इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर किया जाएगा। हाँ भाई देखना ये है, सोचना ये है, कोई धमकी है या कुछ इसके पीछे गहरी गहरी बात भाई मतलब छुपा है। अगली खबर, चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग 23 सितंबर को अमेरिका का दौरा करेंगे, ये वहां की फॉरेन मिनिस्ट्री ने बताया है। विदेश मंत्रालय ने आज एक जारी सरकारी बयान में बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इनविटेशन पर जिनपिंग अमेरिका जा रहे हैं। इससे पहले शुक्रवार को व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से पत्रकारों ने जिनपिंग के दौरे को लेकर के सवाल किए थे। ट्रंप ने इनके जवाब में कहा कि हमारे बीच अच्छे रिश्ते हैं, वो अगले हफ्ते यहाँ होंगे और हमारी बहुत अच्छी बैठक होगी। जापान की राजधानी टोक्यो और आसपास के इलाकों में भीषण तूफान को लेकर के इमरजेंसी अलर्ट जारी किया गया है। हमें अधिकारियों ने लोगों से भूस्खलन और बाढ़ के संभावित आशंकित खतरे को देखते हुए सतर्क रहने की अपील की है। दरअसल ये ताकतवर तूफान डुजवान जापान के पूर्वी किनारे की तरफ बढ़ रहा है, पर इस साल जापान में आने वाला ये 25वां तूफान है। तूफान के असर को देखते हुए करीब 300 फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं और कई दूसरी ट्रेन सेवाओं को भी टेम्परेरीली सस्पेंड कर दिया गया है। रूस में पार्लियामेंट्री चुनाव के शुरुआती रुझानों में प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के समर्थन वाली सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने बहुत बड़ी बढ़त हासिल की है। पता चला है कि पुतिन की पार्टी संसद में 2/3 सीटों पर अपना कब्जा बरकरार रखने की स्थिति में है। आज सुबह तक 90.43% मत पत्रों की गिनती पूरी हो चुकी है, यानी वोट गिने जा चुके हैं। यूनाइटेड रशिया को 57.86% वोट मिले हैं। भारत से आने वाली खबरों में, कांग्रेस सांसद यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इमरान मसूद ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन यानी AIMIM 4-5 सीटें जीत सकती है। उत्तर प्रदेश में भाई विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं और अभी से पार्टियां जो है वो कमर कस रही हैं। कहा है कि सरकार बीजेपी की बनवा देती है पार्टियां तो जीतती हैं वहां दरअसल एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने संडे को कहा कि उत्तर प्रदेश में कोई अकेले बीजेपी को नहीं रोक सकता सारे इकट्ठे होंगे तो कुछ हो सकता है ओवैसी ने कहा कि उन्होंने बिहार में भी गैर बीजेपी दलों को पार्टियों को एक साथ आने की अपील की थी लेकिन उनकी बात किसी ने सुनी नहीं और राज्य में बीजेपी ने गठबंधन वाली सरकार बना ली अफगानिस्तान के तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन ने दावा किया है कि संडे की रात को पाकिस्तानी फौज ने कुनार और पक्तिका प्रांतों में आम लोगों के इलाकों पर बमबारी की है तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन के स्पोक्सपर्सन जबीउल्लाह मुजाहिद ने इस हमले की जानकारी देते हुए कहा कि उचित जवाब दिया जाएगा इन हमलों का जवाब दिया जाएगा मुजाहिद ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा कि बीती रात पाकिस्तानी फौज ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका राज्यों में आम लोगों के इलाकों पर बमबारी की है दो पुरुष मारे गए एक महिला भी बताती है इनका शिकार हुई जबकि दो महिला और दो पुरुष जख्मी भी हुए हैं ये सभी लोकल नागरिक हैं और पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री ने कहा है कि ऐसा हुआ तो एक लीटर तेल 1,000 रुपए में भी मिलना मुश्किल हो जाएगा कैसा रहा यमन के हूती विद्रोहियों की बढ़ती एक्टिविटीज और सऊदी अरब के तेल संयंत्रों पर हमलों से पाकिस्तान के लिए तेल इंपोर्ट करना बहुत मुश्किल हो गया है इसी बीच पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक ने कहा कि तेल की कमी होने की हालत में इसकी कीमत 1,000 रुपए प्रति लीटर तक जा सकती है अमेरिका में गैसोलीन और डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी का असर अब इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर फील्ड पर दिखाई देने लगा है अमेरिकी न्यूज आउटलेट CNN की एक रिपोर्ट में अमेरिकी बिजनेस ऑनर्स और किसानों से बातचीत के आधार पर बढ़ती ईंधन कीमतों के कारण पैदा हो रही चुनौतियों को सामने रखा गया है चैलेंजेस को सामने रखा गया है यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की ने बताया है कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की है और वो न्यूयॉर्क में मिलने पर सहमत हो गए हैं जेलेंस्की ने संडे रात को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ट्रंप से होने वाली बैठक बहुत कुछ बदल सकती है काफी कुछ चेंज हो सकता है और भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट संघ का स्टूडेंट यूनियन के नतीजों पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार देर रात रिएक्ट किया उन्होंने इल्जाम लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने DU स्टूडेंट्स यूनियन का चुनाव घपले से जीता है आपको बता दें भाई ये जहां एक तरफ राहुल गांधी स्टूडेंट्स और नौजवानों की भीड़ को एड्रेस कर रहे हैं और वहां पर भाई कुछ कॉमेडियन भी मंच पर जो है कॉमेडी करते हुए मिमिक्री करते हुए नजर आए हैं वहीं जो इलेक्शन हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की जो स्टूडेंट पार्टी यानी स्टूडेंट दल है उसका नाम है उसका आई थिंक दो पार्टियां कांग्रेस की तो NSUI है नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया उसकी हार हुई है और जो बीजेपी की समर्थित पार्टी है वो है अखिल भारतीय छात्र संघ या स्टूडेंट यूनियन ABVP कहते हैं उन्हें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तो उसकी जीत हुई है और भाई आखिर में ये खबर कि सीरिया के उत्तरी इलाके में अलेपो प्रांत के एस शहर में आज सुबह कई धमाके हुए हैं बताया गया है कि धमाके सीरियाई डिफेंस मिनिस्ट्री से जुड़े एक हथियार डिपो में हुए और घटना के बाद इलाके में स्थिति को लेकर के जानकारी जुटाई जा रही है ये थे आज के प्रमुख समाचार समाचार समाप्त होते हैं
1: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
2: लौटिए संगीत की ओर

0: Mamster Pani Puri or Pani Puri Ka Pani.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
3: From Southall Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
4: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
5: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर।
6: और लीजिए साहब अगला गीत सुनवाते हैं आपको, इसमें थोड़ा नशा है कुछ थोड़ा मजा भी है। हमारे स्टाफ में कई हैं, वो चाय का चर्चा अभी तक चल रहा है, वो हमारी कौन है ये अपनी नैना शाह कहती है हम भी चाय के तोड़े हुए हैं मरोड़े हुए हैं क्या बताएं साहब, कहते हुए इंडिया में सड़क पर वो जो चाय बेचने वाला था उसके यहाँ वहाँ खड़े होकर के चाय पीने का मज़ा ही कुछ और होता था। हाँ भाई हमारे यहाँ जो कॉलेज में कैंटीन थी ना वहाँ बड़ी परेशानी थी, वो चाय वाला हमारा दैया साहब था वो कहता था मैं तो शर्मा जी अपना ये खोखा बंद करूँगा। मैंने कहा क्यों भाई, कहता ये स्टूडेंट्स आते हैं ना 30 पैसे में, 30 पैसे की चाय आती थी, 30 पैसे में मुझे अपनी बीवी बना लेते हैं, इतना काम लेते हैं। कहते पंखा चला, अरे दया साहब ये टेबल पे कपड़ा मारो भाई, अखबार मंगवा के दे भाई अखबार, चाय बना दे 2/3, 2/3 का मतलब है 2 के पैसे देंगे 3 कप बन जाए 3 आदमी पियेंगे ऐसी बना देना। और साहब उसके बाद कहते हैं चाय पीने के बाद कहते हैं तो भाई पैसे लिख देना। क्यों क्यों भाई, हाँ चाय तो पी लेकिन मजा नहीं आया।

स्वागत है आपका मनोरंजन प्रोग्राम के दूसरे दौर में। थोड़ी देर के लिए गंभीर हो जाइए और सुनिए थॉट फॉर द डे, आज का विचार। हम इसे कहते हैं चिंतन। आज के चिंतन में शामिल करने के लिए आलेख हमें सटन से प्रशांत ने भेजा है। प्रशांत कहते हैं, आपका रेडियो सुनकर बहुत अच्छा लगा और आपका चिंतन हम पसंद करते हैं। आज एक खास दिन है, उस अवसर पर आप इसे चिंतन में शामिल कीजिए। तो प्रशांत जी और सुदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आपके नए घर में प्रवेश करने के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और भाई, आज का चिंतन वो याद दिला रहे हैं कि आज एक त्यौहार है, और वो ऐसा त्यौहार नहीं भाई ईद बसाखी दिवाली जैसा, किसी धर्म से इसका संबंध नहीं, किसी व्यक्ति विशेष वर्ग से इसका संबंध नहीं, सबका त्यौहार है। और त्यौहार का नाम है इंटरनेशनल डे फॉर द पीस, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। सुना है आपने कभी? भाई ये त्यौहार सबके लिए है, सबका है, साझा। लेकिन इसका इनिशिएटिव जापान ने लिया। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र का, यूनाइटेड नेशंस का जापानीज ये इनिशिएटिव है। और आजकल आपको बता दें कि एक बहुत बड़ा घंटा, जो घंटी होती है ना, जैसे वो बेल, एक शांति की घंटी, बेल ऑफ पीस, यूएनओ में स्थापित की गई है, कई सालों से है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की सबसे सुंदर और सिंबॉलिक ट्रेडिशंस में ये एक है। और फिर नोट कर लीजिए भनो भाइयों, आज 21 सितंबर का जो दिन है, इसके संदर्भ में ये इंटरनेशनल डे फॉर द पीस वहां मनाया जा रहा है। कैसे? आज ही के दिन भाई यूनाइटेड नेशंस में वो जो घंटा है बहुत बड़ा, यानी बेल ऑफ पीस है, वो उसको बजाया जाता है साल में एक बार 21 सितंबर को, बिकॉज इट इज अ पीस बेल, इट इज द यूनाइटेड नेशंस डे फॉर द पीस। आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन ऑफ जापान ने 8 जून 1954 को यूनाइटेड नेशंस को एक ये घंटा, ये बेल जो है, ये भेंट की थी। लेकिन इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह घंटी सिर्फ जापान की नहीं है, इसे बनाने के लिए 60 से ज्यादा देशों के लोगों के से सिक्के और धातु के टुकड़े इकट्ठे किए गए। मोर देन 60 कंट्रीज कॉन्ट्रीब्यूट द मेटल पीसेस टू मेक दिस बेल। और यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि इसमें कई देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ आम लोगों और बच्चों का कॉन्ट्रीब्यूशन भी था। इन सारे मेटल्स को, इन सारी धातुओं को पिघलाकर ये घंटी, ये घंटा का हो बनाया गया। और इसलिए जब ये घंटा बजता है तो उसकी आवाज में मानो दुनिया के अनेक देशों की सामूहिक शांति, सांझी शांति की इच्छा सुनाई पड़ती है, अमन चैन की एक तमन्ना मानो पुकार रही हो। और इस भाई घंटे के ऊपर जापानी अक्षरों में एक संदेश भी लिखा है जिसका मतलब है लॉन्ग लिव वर्ल्ड पीस, दीर्घायु हो, पूर्ण विश्व शांति, अ कंप्लीट पीस इन द वर्ल्ड। अब जिस लकड़ी के ढांचे में इसको रखा गया है वो एक ट्रेडिशनल जापानी टेंपल जैसा है, और जापानी साइप्रस की लकड़ी से यह बनाया गया है। और सबसे इमोशनल बात यह है कि 21 सितंबर का दिन जो आज है, ये इंटरनेशनल डे ऑफ पीस घोषित किया गया है, और इसी मौके पर, यानी आज ही के दिन, वहां ये घंटी बजाई जाती है। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल और असेंबली के अध्यक्ष भी इस समारोह में घंटी बजाते हैं। ये सेरेमनी परफॉर्म की जाती है जिसमें महासचिव एंटोनियो गुटरेस और 81वें महासभा अध्यक्ष
खलीलुर रहमान ने घंटी बजाई थी, ये फॉर्मर भाई लीडर रहे हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। सोचिए एक घंटी जिसमें 60 कंट्रीज के लोगों के सिक्के पिघलकर एक हो गए, जुड़ गए। अब आप उसमें पहचान नहीं सकते कि मेटल का कौन सा हिस्सा कौन से देश का था, और ये घंटी आवाज करती है तो मानो सब मिलकर के बोल रहे हैं। देश भले ही अलग अलग भाषाएं बोलें, लोग अलग अलग धर्मों का पालन करें, संस्कृतियां फॉलो करें, लेकिन ये घंटी बनाने के लिए जब धातुएं पिघली तो इनकी अपनी अलग पहचान नहीं रही, एक हो गई। और जब घंटी बजती है तो उसका पैगाम होता है कि हम अलग हो सकते हैं लेकिन शांति की हमारी इच्छा, हमारी चाहत एक ही है, पीस। शायद यूनाइटेड नेशंस की पीस बेल का ये सबसे बड़ा पैगाम है। पर जरा सोचिए बहनों भाइयों, जिस जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वो भयानक दुर्घटना झेली, उसी जापान की ओर से यूनाइटेड नेशंस को शांति की ये घंटी मिली। ये इतिहास और मानवीय आशा दोनों को एक साथ जोड़ती है। भाई देशों में जंग तो आज भी चल रही हैं, चाहे वो मिडल ईस्ट में हो, चाहे वो रशिया और यूक्रेन के बीच हो, और भी कई देशों में छुटपुट संघर्ष जारी हैं। और भाई ये संघर्ष किस चीज को लेकर के, जमीन के टुकड़ों को लेकर, भाषाओं के लेकर, धर्म को लेकर के भी झगड़े होते हैं साहब। धर्म कहते हैं कि ईश्वर एक है, लेकिन वो वाला नहीं है जिसे तुम मानते हो। ईश्वर एक है पर उसका वो नाम नहीं हो सकता जिसे तुम फॉलो करते हो। जो हम मानते हैं वही ईश्वर है। और जब किसी का धर्म पूछकर उसकी हत्या की जाती है तो कैसे शांति स्थापित हो पाएगी। आइए आज अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस पर ये मान ले, ईश्वर एक है तो भले ही चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारे, वो वही है जो तुम्हारा है, वो वही है जो हमारा है। उसके टुकड़े नहीं हो सकते, उसका बंटवारा नहीं हो सकता। मत पूछो किसी से कि वो हिंदू है या मुसलमान है, बस इतना समझ लो कि वो इंसान है।

जगजीत सिंह की आवाज में ये गंभीर चिंतन, ये संदेश आपने सुना। और उससे पहले भाई हमने जो आलेख आज प्रोग्राम में शामिल किया, इंटरनेशनल डे फॉर द पीस, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के अवसर पर प्रशांत जी ने सटन से भिजवाया हमें आज का चिंतन, आज का आलेख। उनकी पत्नी सुदीप्ता जी भी, उनका भी कंट्रीब्यूशन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद नए घर में प्रवेश के लिए, आपको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। मैं ना हिंदू ना मुसलमान, मुझे जीने दो, दोस्ती बस है मेरा पैगाम, मुझे जीने दो, जी लेने दो। आज अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के अवसर पर ये चिंतन हमने प्रस्तुत किया। और भाई इसका रिस्पॉन्स देखिए, बहुत सारे लोगों ने मैसेज भेजे हैं। रवि जी सुपर लिख रही हैं, शोभना राय, जगदीश जी बुशी से एक्सीलेंट चिंतन वो कहती हैं, कीर्ति कहती हैं मे देयर बी पीस ऑन द अर्थ, शांति चैन अमन भाईचारा मेल मिलाप, यही तो चाहिए जीने के लिए। थैंक यू जगदीश जी बुशी में। और फतेह पटेल वुल्वरहैम्पटन में, रवि भैया बहुत खूबसूरत चिंतन, थैंक यू भाई। नीला चौधरी जी हमारी रेगुलर लिसनर, जय श्री कृष्ण कहती, वेरी ट्रू चिंतन एंड वेरी नाइस। विजय मॉरिशस वाले कहती, आपका प्रतीक्षण जिंदगी का मंगलमय हो, ये हम दुआ करते हैं यार। अनुषा राजानी थैंक यू वेरी मच, आप चाय पर टिप्पणी कर रही हैं, आगे जब आज लगता है तो चाय कोई ना कोई पिला ही देगा शर्मा जी को, थैंक यू। एक जमाना था जब मैं भाई वर्ल्ड सर्विस में बीबीसी की वहां काम करता था, तो वहां चाय पता है कितने की मिलती थी, यकीन नहीं करेंगे आप, वहां 6 पैनी की चाय मिलती थी, सब्सिडाइज था, कैंटीन में बहुत कुछ हम वहीं खाते पीते थे, तो 6 पैनी की चाय, हमारा आपस में वहां झगड़ा होता था कि आज मैं पिलाऊंगा आज मैं पिलाऊंगा। तुमने कल पिलाई थी आज मेरी बारी है भाई, ऐसी चाय मिले तो। लेकिन फिर भी शर्मा जी को चाय बिल्कुल नहीं प्यारी है,

0: प्यार का सलाम सिर्फ आपके नाम नहीं है, बंदे ने फोटो कॉपी करा के 40 लोगों को भेजी है। और एक संदेश आया है भाई, ये आप सबके नाम डेफिनेटली आया है। संदेश है, दिस इज द कैच द ब्रांड न्यू गेम शो इंडिया के टॉप 1%, होस्टेड बाय अनिल कपूर। एवरी वीकेंड पे होता है ये शाम 8 बजे, एंड वेयर ऑन स्टार प्लस एंड जियो हॉटस्टार। डाउनलोड एंड सब्सक्राइब टू द जियो हॉटस्टार ऐप नाउ। जियो हॉटस्टार इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन स्काई टीवी एज एन ऐप।
1: ये है लाइका रेडियो, फील गुड ट्रैक, brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: ਗੋਲਗੱਪਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ।
1: All Monster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: From Southall Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
3: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
4: Uncle G spent £40,000 on rent, but zero online. His shop is empty. His nephew's TikTok is booming. Be seen. Visit heartyhanks.com. Hearty Hanks. Outdated is out of business. Visit heartyhanks.com today.
5: Hello there, my name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7 a.m. Saturdays and Sundays. Like a gold in London, the Midlands and Manchester.
6: वेरी गुड मॉर्निंग भाई, ये चाय पीछा नहीं छोड़ रही है, चाय पीने वाले आ गए। कई बार क्या होता है कि आप अपने लिए चाय बनाते हैं, अचानक गेस्ट आ जाता है तो आप घोड़ा मोली करते हैं। घोड़ा मोली क्या होता है कि उसी में दो थोड़ा यार थोड़ा पानी और डालो। और कई बार तो मैंने बताया ना, यूनिवर्सिटी में हमारा वो खोखे वाला दैया साहब, वो उसको तो यही कहते थे दो बटा तीन बढ़ा दे। फिर एक दोस्त और आ गया, कहता भाई दो बटा चार कर दे। बताओ ऐसे से यार, दो और आ गए तो भाई वो जो चाय बनवा रहा था ना कस्टमर, ओरिजिनल कस्टमर कहता है यार तू ऐसा कर, तू रह नहीं दे, हम नहीं पीते चाय भाई, अपने हिस्से में आनी कहाँ है। चाय ऐसी चीज है भाई, क्या बताएं, बस मैं तो कहता हूँ गेस्ट आए ना तो आप उसको चाय पिलाओ, वो कौन सी, वो ग्रीन टी। ग्रीन टी उसमें ना मीठा हो ना दूध हो, कुछ भी ना हो। उसके कई फायदे हैं, एक तो बंदे सोचते हैं भाई बड़े ये पढ़े लिखे कोई ऐसे वर्ग के लोग हैं जो ऐसी चाय पीते हैं, सेहत के लिए जागरूक। दूसरी बात खर्चा कम। तीसरी बात बंदा जो एक बार पिएगा ना मुड़ के नहीं आएगा, बता दें। थैंक यू हमारे जो बैसन साहब हैं, उन्होंने भेजा ही आइडिया कि रवि जी आप आओगे ना तो आपको ऐसी ही चाय पिलाएंगे। थैंक यू जी। चिंतन के प्रशंसक बहुत संदेश भेज रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। लो जी चाय हाजिर आपके लिए, थोड़ी नशीली है।

राजेंद्र राज जी, थैंक यू वेरी मच। राजकुमार कहते हैं, सोमवार की प्यार भरी राम राम, सोमवार की नहीं, राजकुमार की प्यार भरी राम राम।

स्वर्गीय मुकेश और साथियों की आवाजों में ये गीत हमें पहुंचाएगा खबरों तक। और भाई खबरों में वाल प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वो सेक्सुअल हरेसमेंट और रेप जैसे अपराधों के लिए स्पेशल व्यवस्था कर रहे हैं, कोर्ट में न्याय मिलेगा, हर क्राउन कोर्ट में एक कमरा अलग से ऐसे केसेस से निपटने के लिए निश्चित किया जाएगा। समाचारों की ओर ये गीत हमें ले चला।

हम तो तेरे आशिक हैं, जबरदस्ती के आशिक हैं, चाहे तू माने या ना माने। भाई बहुत सारी नहीं मानती हैं फिर भी आशिक तो हैं, क्या कर सकते हैं, आशिक है, अपने घर में है, तुम्हें क्या कहती है, सोचते हैं क्या चाहते हैं, ठेका थोड़ा दिया सबको बताने का। बैक टू बैक संगीत भाई कार्यक्रम के अंतिम दौर में स्वागत।

Polly. Mrs. Subramaniam. ये कौन है मिसेस सुब्रमण्यम? ओरिजिनल नाम कविता कृष्णमूर्ति, इज द आर्टिस्ट ऑफ द वीक। अरे साहब, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ जब वो यहाँ आई थी स्टेज शो करने, लाइव देखा था, करीब से उन्हें सुना था, उस वक्त बहुत खूबसूरत सांवली सी लड़की, और आवाज वही तो पहचान है। नहीं, दिल्ली वाली नहीं है, दिल को जलाए, आग लगाए, चेन्नई वाली।

0: कविता कृष्णमूर्ति, वेरी वर्सेटाइल सिंगर भाई। आशा जी के बाद अगर कोई उनकी जगह भरने की कोशिश कर सकता है तो जिसमें वैरायटी ऑफ भाई मूड्स जो वो अपनी आवाज में शामिल कर सकती हैं वो कविता जी हैं। और कविता जी, कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, उनके पति देव बहुत जाने माने वायलिन वादक हैं और इस सप्ताह वो हैं आर्टिस्ट ऑफ द वीक।
1: Brought to you by Dairy Valley. Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

आपको बता दें पहले सोने की तवीथड़ी क्या होता है, गले में पहनने वाली वो तवीथड़ी होती है, पंजाबी वाले समझ जाते हैं और भाई जो नहीं समझते मत लेना, जो समझ गए हमें बनवा लेना हस्बैंड से जिद करके कि सोने की तवीथड़ी चाहिए मैनू कादे वास्ते। है लो सोने की तवीथड़ी, जे मैं होंगी सोने की तवीथड़ी तेरे गल च पै तेरे गल पै जाती रही गल ना लगे तेरे।

0: What a voice she was blessed with by Noor Jahan, Malika Tarannum. नूर जहां की आवाज़ में अपनी गीत सुना भाई, इसलिए सुनवाया कि आज वो दुनिया में होती तो अपना जन्मदिन मना रही होती। यस, 21 सितंबर 1926 में जन्मी थी और 2000 में उनका इंतकाल भी हो गया, लेकिन अपने जीवन काल में बहुत सारे मीठे मीठे गीत वो देकर गई। ये गीत खासकर भाई इसलिए पसंद है, मैं इसको बहुत बार सुन चुका हूं और एक बार लाइव सुना, लाइव नहीं नहीं नूर जहां की आवाज़ में नहीं, अपनी नूर जहां हमारे रेडियो में है, एक नूर जहां अनीसा नासिर उनका भी ये फेवरेट सॉन्ग है, तो वो गाती हैं भाई आज नूर जहां दुनिया में होती तो अपने जन्मदिन मना रही होती। और किसका जन्मदिन है, बाली भाई तो जिक्र करेंगे, हम भी बताएंगे, हमारे एक दोस्त फिल्म इंडस्ट्री में आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं।
1: Brought to you by Dairy Valley. Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Ye hai Leica Radio.
3: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

एक विलेन है, अब विलेन में आप तौर पे गाने नहीं पिक्चराइज होते, वो तो भाई लड़ाई झगड़े छेड़खानियां, बस लड़की के साथ किसी विलेन को अपने गाना गाते देखा हो प्यार मोहब्बत में डूब करके, नहीं वो तो लड़की को उठाने वाले होते फिल्म में। गुलशन ग्रोवर आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे गुलशन। कुछ फिल्मों में इतने दमदार रोल हैं गुलशन ग्रोवर के कि आपको लगेगा कि भाई सबसे पावरफुल विलेन दिखाई पड़ते हैं।

सोनू निगम की आवाज और गुलशन ग्रोवर पर पिक्चराइज्ड ये गीत। मेरी जो लास्ट मीटिंग गुलशन ग्रोवर के साथ हुई थी वो मेरे अपने शहर में रोहतक में। मैं घर से विदाई लेकर के एयरपोर्ट की ओर जा रहा था, फ्लाइट पकड़नी थी, तभी फोन बजा और गुलशन कहता मुझे पता लगा है कि आप रोहतक में आए हुए हैं, सीधे फिल्म सिटी चले आओ, ब्रेकफास्ट पर वेट कर रहा हूँ आपकी। मैंने कहा फ्लाइट है? कहता फ्लाइट रुकवा देंगे, आप जानते हैं विलेन कुछ भी कर सकता है। समय था फ्लाइट में भाई, बड़ा अच्छा लगा। अपने मेरे शहर में फिल्म सिटी है, अब शूटिंग चलती रहती है वहाँ फिल्मों की। उस दिन गुलशन से मुलाकात करके ब्रेकफास्ट किया साथ में। गुलशन आज आपका बर्थडे भाई, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे।

0: भाई आपके घर परिवार में भी किसी का जन्मदिन है तो नाच गाना हो भाई मस्ती हो। वैसे पॉलिटिशियंस में बताऊं, आपने नाम सुना हो शायद सतपाल महाराज, ये मेरा ख्याल उत्तराखंड से आते हैं, महात्मा सतपाल महाराज 1951 में जन्मे थे कनखल में हरिद्वार के पास, और भाई वो राजनीति में काफ़ी सफल रहे हैं, हालांकि उनके भाई का तो बहुत नाम हुआ था इसमें अध्यात्म में, पर आज ही महाराजा हरि सिंह का भी जन्म हुआ था 1895 में, कश्मीर के राजा थे। और इसके अलावा भाई नूर जहां गुलशन ग्रोवर, इनका भी जन्मदिन आज ही पड़ता है, पर आपके घर परिवार में अगर कोई आज अपना जन्मदिन मना रहा है तो हमारी ओर से ये पैगाम जा रहा है, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न सर।
1: Track of the Hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
2: Manoranjan with Ravi Sharma. Like a radio.
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: नोट कीजिए साहब, रेट्स लेम्फाई के वो एक पाउंड के बदले पाकिस्तानी करेंसी में दे रहे हैं 371.05 रुपीस, भारतीय करेंसी में इन इंडियन करेंसी 128.27 रुपीस, बांग्लादेशी करेंसी टकास 164.26, श्रीलंकन रुपए 442.67, केनियन शिलिंग्स 173.37 एंड मॉरिशन रुपी 63.8 रुपीस फॉर वन पाउंड।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. This is LIKA Radio across the Midlands. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is LIKA Radio.
0: सोने का भाव, सोने का क्या भाव, जितना मर्जी सो नहीं, गोल्ड का रेट, वाई द गोल्ड इज ट्रेडिंग एट द रेट ऑफ 104.6 पाउंड्स पर ग्राम।
1: राम ज्वेलर्स स्पेशलाइजिंग इन डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, 22 कैरेट गोल्ड, व्हाइट गोल्ड ज्वेलरी, कॉइन्स एंड गोल्ड बुलियन बार्स। विजिट राम ज्वेलर्स ऑन 116 बेलग्रेव रोड, लेस्टर, और कॉल 0116 266 4278।
3: Hello. Wake up with me, Kajal, on The Breakfast Show, where I take you down memory lane, get inspired by Morning Mantra, Monday to Friday, 6 a.m. to 10 a.m, Like a Gold and Like a Radio Midlands.
0: Big Show में सुनिएगा वो गाना उनकी पसंद का, सोने दी तभी तेरी। हमारे खान साहब कहते हैं, खान साहब कहते हैं कि जवानी की याद दिला दी वो गाना सुनवा कर, मोहम्मद खान साहब वो गीत आपके नाम किया, क्या याद करेंगे आप भी। और भाई हमारी अरुणा शाह कहती हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा गीत, वो मेरे नाम कर दीजिए। अच्छा, सोने की तवितड़ी सबके नाम करता रहो तो मैं तो लुट जाऊंगा ऐसे भाई। सोना सबके नाम, खान साहब के नाम कर दिया, आपके भी नाम कर दिया, और किसी को चाहिए सोने की तवितड़ी शाम को मांगना। और अर्जुन जी आपका संदेश मिल गया, थैंक यू वेरी मच भाई जो हमारे साथ जुड़े हैं इस समय, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को धीरे धीरे हम अब समेटने का कार्यक्रम बनाते हैं, क्योंकि बाली भाई आ चुके हैं, तैयारी कर रहे हैं बाहर, और वो लाएंगे जन्मदिन मनाने वाले सितारों की, फिल्मी सितारों की जानकारी। मैं ये राजनीति की, मैं भाई राजनीति में जो मैंने जिक्र किया सतपाल महाराज का, कनखल में 1951 में वो जन्मे थे, और मैंने कहा एक बाल योगेश्वर नाम के महात्मा होते थे, अध्यात्म में बड़ा नाम कमाया था, वो इन्हीं के परिवार से थे। तो भाई जो जो जन्मदिन मना रहे हैं, हैप्पी बर्थडे।
4: LIKA Radio.
5: क्योंकि सांस भी कभी।
6: This part of the show is sponsored by क्योंकि सांस भी कभी बहु थी. Every day at 9 p.m. on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar. Four stars, one stage, one date. Jay's Entertainment presents Bollywood Legends featuring actor Sanjay Kapoor, actor Aftab Shivdasani, playback singer Aman Trika, and singer Mayuri Patalia. Sunday the 27th of September at De Montfort Hall, Leicester from 7pm. Tickets from £20. Book now at demontforthall.co.uk or call Mr. B on 07860 280655. Exclusive radio partner, Leica Radio. Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
3: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Burfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same burfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
7: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialise in delivering truly exceptional class events. Call us on 020 8839 0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
3: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months, featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports. There's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203 963 5757 to arrange your meeting.
8: खाखरा क्रंच भाकरी मंच चिक्की स्वीट पापड़ बीट पिकल्स हीट ये है जैमिन फूड्स का वाइब चेक
9: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जैमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स खाखरा नमकीन पापड़ पिकल्स चिक्की पॉट मील्स एंड मच मोर
8: जैमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स
6: London, are you ready? Raga Events presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the OVO Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.

0: कड़क हैं भाई, थोड़ी भड़क है इनको, झगड़ा नहीं चाहते। हम चुपचाप जो है अपना बोरिया बिस्तर समेट लेते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, बिछड़कर भी मैं तुम्हारे करीब होता हूँ, जुदाइयों में तुम्हारे ध्यान रहते हैं। हो वक्त कोई, मुकाबिल कोई, हो बात कोई, मेरे लबों पे तुम्हारे बयान रहते हैं। जो मेरी आंख में रहते हैं रोशनी बनकर, वो बन के दिल में मेरे मेरी जान रहते हैं।
1: राधा बिना है किशन अकेला, राधा बिना है।
0: कहते जाने की बात मत करना, आने की बात करना, कल आएंगे 10 बजे की खबरों के बाद।

माली भाई आएंगे एक बजे की खबरों के बाद आपका साथ निभाएंगे रवि शर्मा को अगली मुलाकात तक के लिए अनुमति दीजिए हैव अ सुपर्ब डे बाय बाय

वाह, कैसे कैसे गाने, इन गानों को सुनकर ना दिल खुश हो जाता है, बिकॉज ट्रिब्यूट भी करने का मजा आता है। एक प्रतीक्षित सदस्य, जैसे कि समझो सफीरे आला ऑफ बॉलीवुड इंडस्ट्री, देखा जाए तो सिनेमा के भीष्म पिता। अब ये तो बहुत बड़ा टाइटल दे दिया मैंने, सिनेमा के भीष्म पिता, कौन हो सकता है ये, द डोयन ऑफ हिंदी सिनेमा, फिल्म मेकिंग, फिल्म डायरेक्शन, फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन की कला में सबसे सम्मानित व्यक्ति, द मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन, दैट हैपन्स टू बी नन अदर देन ताराचंद बरजातिया। यस, अ प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर ऑफ राजश्री फिल्म्स। जब इंडिया को आजादी मिली 15 अगस्त 1947, तब दो सेलिब्रेशंस हुए, एक तो आजादी और दूसरा राजश्री पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड, विच वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 15th अगस्त 1947। तो आज हम ताराचंद बरजातिया जी को क्यों याद कर रहे हैं, बिकॉज इट इज हिज 34th डेथ एनिवर्सरी। ही वॉज बोर्न ऑन 10th ऑफ मई 1914। मकान का नाम राजश्री भवन, कुचमन सिटी, जो जोधपुर स्टेट पे हुआ करता था, दैट इज इन राजस्थान। एंड ही पास्ड अवे ऑन 21st सितंबर 1992 in Mumbai, that was at the age of 78. अब देखा जाए तो उनकी स्टोरी मैं आपको सुनाता हूं। ताराचंद, इनके पिताजी, he emphasized on education, so he sent him to Calcutta, which is now Kolkata, to do Bachelor of Arts. So BA graduation किया, then पिताजी चाहते थे, he wanted him to study law, but ताराचंद was not interested. वो एक backbencher हुआ करते थे, backbencher में लेटे हुए he used to be reading filmy magazines in the classrooms, and when his dad discovered this, he enrolled ताराचंद as an apprentice with Moti Mahal Theatres. अब Moti Mahal Theatres

0: आरती और दोस्ती इन फिल्मों के बाद जिसमें स्ट्रॉन्ग फैमिली वैल्यूज थी विद होलसम म्यूजिकल एंटरटेनमेंट फिर तो इतनी सारी मूवीज आई ब्लॉकबस्टर्स फ्रॉम राजश्री प्रोडक्शंस जीवन मृत्यु जिसमें इंट्रोड्यूस किए गए राखी और धर्मेंद्र और फिर अमोल पालेकर और जरीना वहाब को चित चोर
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: जैसे मैं कह रहा था, फिल्में आई चित चोर, जिसमें अनमोल पारेकर और जरीना वहाब को पहली बार as a couple दिखाया गया. दूसरी फिल्म थी, तराना जिसमें मिथुन चक्रवर्ती को रंजीता के साथ पेयर अप किया गया था एंड देन गीत गाता चल जिसमें दे इंट्रोड्यूस्ड सचिन एंड सरिका द ब्यूटीफुल कपल दे एंड ऐसे ऐसे लोगों को इंट्रोड्यूस करने वाले और शारदा को फिल्म सूरज में दूसरी फिल्में जो थी तपस्या उपहार पिया का घर सौदागर और अखियों के झरोंकों से जिसका आपने अभी गीत सुना संग बाई हेमलता एंड शैलेंद्र सिंह सावन को आने दो नदिया के पार दूसरी सारी बहुत सारी फिल्में हैं बट सुपर डुपर हिट्स वन बाय वन एंड देन ताराचंद जी ही एनविजन्ड द इनहेरेंट पोटेंशियल विद इन हिज ग्रैंडसन सूरज बरजातिया उनका ग्रैंडसन राजकुमार उनका बेटा जो है उसका बेटा तो ग्रैंडसन सूरज बरजातिया में ही सो लॉट ऑफ पोटेंशियल सो ही कंटिन्यूअसली स्टिम्यूलेटेड द ग्रोथ ऑफ यंग सूरज एंड एनकरेज्ड हिम टू इंडिपेंडेंटली डायरेक्ट अ फिल्म फॉर द राजश्री बैनर और नतीजा था फिल्म हम आपके हैं कौन लेकिन पहली फिल्म थी मैंने प्यार किया ब्लॉकबस्टर सुपर डुपर हिट फिल्म अब देखा जाए तो इतने सालों बाद हिज न्यू मूवी इज कमिंग नाउ सूरज बरजातिया की ये प्रेम मोल लिया एंड वो सॉन्ग कल ही रिलीज हुआ मितुल जी ने बताया मुझे कि कल सॉन्ग रिलीज हुआ दैट्स सो स्वीट एंड आई थैंक यू फॉर ऑल योर मैसेजेस गुड आफ्टरनून बाली आई हैव रिक्वेस्ट मुकेश जी सॉन्ग फिल्म सोसाइटी अनरिलीज्ड लेकिन मैं तो ट्रिब्यूट कर रहा हूँ ना ताराचंद बरजातिया का और नेक्स्ट आवर में भी दूसरा एक ट्रिब्यूट है बाय द वे इट्स डी डी आई डिडंट अंडरस्टैंड ओ या डीडी डीडीडी दिनेश दीनू दत्ता अगर मौका मिला थर्ड आवर में हम करेंगे गाना थैंक यू वेरी मच फॉर योर मैसेजेस आगे बढ़ती हैं
1: ये है लाइका रेडियो
0: एंड आई हैव न्यूज फॉर यू एंड द न्यूज इज Final few days to go to the Diwali story brought to you by Sanatan Events and exclusive radio partner Laika Radio Network. It takes place at OVO Wembley Arena on Sunday, 27th September. Doors open at 4:30 p.m. with a student pre-show from 5 p.m. to 5:45 p.m. and the main performance from 6:15 p.m. to 9:30 p.m. Tickets from www.diwalistory.com
1: Wake up to Kajal on breakfast every weekday at 6 a.m. and drive back with Raj Padden weekdays at 4 p.m. Laika Radio. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive.
3: You're listening to Bali Brahmat in Gold Afternoons. Gold Afternoons. Proudly sponsored by Gemin Foods. Quality, taste and tradition in every pack. Find your favorites at Asian shops near you. Gemin.
1: one performer.
4: Countless
2: personalities.
1: A whole universe of entertainment.
2: Sunny Ely Grover, live UK Tour 2026.
1: 29th October, Ovo Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
2: From Gutti to Dr. Mashur Gulati. From Rinku Bhabhi to brand new surprises. Experience Sunny Ely Grover live on stage in the UK.
1: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
2: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
1: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
5: Dubai is an opportunity to now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
6: 11, 11.
7: Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
8: Dubai is the place.
7: 11, 11. Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
6: Danu 11, 11. Danu Properties. Danube 11, 11.
2: City Bond Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
9: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
2: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
9: Also explore 2026 cruises
2: from Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester or call City Bond Travel on 01162 167 225. We're at all protected.
10: Hamari rakshak hai wo.
11: Balaji Telefilms presents The One, Force of the Forest.
12: Mujhe ye jo ajeeb si cheeze dikhai de rahi hai un sab ka matlab kya hai, kaun kar raha hai?
11: Mystery, fantasy, action. The One, starring Siddharth Malhotra and Tamanna Bhatia, in cinemas Friday 25th September. For UK release details, follow Bakrani.

संगीत था रोशन का और लिरिक्स मजरू सुल्तानपुरी पहली फिल्म ऑफ ताराचंद बरजातियाज राजश्री प्रोडक्शन प्राइवेट

मेरा कंप्यूटर भर गया विद ऑल योर मैसेजेस एंड रानी जी थैंक यू सो मच फॉर प्लेइंग सच अ ब्यूटीफुल सच ब्यूटीफुल पंजाबी सॉन्ग्स एंड एंड वी गॉट कीर्ति एंजॉइंग योर प्रोग्राम एज ऑलवेज एश शर्मा सेज थैंक यू बाली भाई फॉर ए वंडरफुल स्टार्ट टू द लाइफ ऑफ मलिकाए तरन्नुम सो आगे सुनते जाइएगा मजा आएगा किशोर पंड्या जी क्या बात है जोरदार थैंक यू वेरी मच एंड डी डी वी शैल कैच अप लेटर ऑन एंड वी गॉट सलमा जी फ्रॉम मेडस्टोन विजय गुडोरी ज्योति एंड गिरीश शाह एंड जयदेव सोनी इज वेरी एक्साइटेड अबाउट ऑल द सॉन्ग्स दैट वी आर प्लेइंग हियर Farida Ghulam Ali, of course, you would be like so elated with all the songs. And Inta Shabji, you're back from Pakistan. Welcome back. And it's so nice to get your messages. And salams and namaste to you. And enjoy this hour of Malika-e Tarannum, Nightingale of the East, Queen of Hearts, Daughter of the Nation, the Nightingale of Punjab. Madam Noor Jahan. She was born on 21st September 1926 in Kasur. Kasur was in Punjab, is in Punjab. Ek Pakistani shahar jahan kai notable people, jaane maane log wahan janme the. Ab Kasur is actually south city. It's in the south of Lahore. And the notable people that I manage naam padhe to main bada khush hua it was the burial place of Sufi poet Bulle Shah wah namcheen logon ka is gaon ke sath nata hai Kasur is the birthplace of Bade Ghulam Ali Khan classical vocalists and Barkat Ali Khan उनका भी जन्म इस जगह पे हुआ कसूर में यूसुफ खान देयर इज अ पॉपुलर फिल्म जिद्दी मतलब कि एक एक्टर जिन्होंने इतनी खूबसूरत फिल्मों में काम किया यूसुफ खान एंड फतेह मोहम्मद सियाल फर्स्ट अहमदी मिशनरी हु वाज सेंट फ्रॉम इंडिया टू यूके Now, Noor Jahan, Madam Ji, was born as Allah Rakhi Vasai, unka asli naam. And she passed away on 23rd December 2000 in Karachi. Her father, Imdal Ali, and mother, Fateh Bibi, they had 8 children, and Noor Jahan was one of them. Inke हस्बैंड्स देखें स्पाउसेस देखें तो शौकत हुसैन रिजवी जिनके साथ इनकी शादी हुई थी 1941 में एंड डिवोर्स्ड इन 1953 1947 में दोनों पाकिस्तान वापस चले गए थे एजाज दुरानी 9 इयर्स यंगर देन हर 1959 में जब डिवोर्स हुआ 1953 में 6 साल के बाद एजाज दुरानी के साथ शादी हुई 1959 में एंड गॉट डिवोर्स्ड इन 1971 एंड शी गॉट 3 चिल्ड्रन फ्रॉम ईच मैरिज शौकत हुसैन रिजवी के साथ 3 बच्चे एजाज दुरानी के साथ 3 बच्चे एंड देन शी हैड अ फ्यू वंडरफुल रिलेशनशिप्स विद अ क्रिकेटर नजर मोहम्मद एंड एक्टर यूसुफ खान जिनका नाम मैंने आपको बताया हु वाज बोर्न इन कसूर नाउ शी हैज द रिकॉर्ड ऑफ हाईएस्ट नंबर ऑफ फिल्म सॉन्ग्स इन पाकिस्तानी सिनेमा जॉइंटली हेल्ड विद अहमद रशदी अहमद रशदी वाज अ प्लेबैक सिंगर फ्रॉम 1951 टू 1983 एक्टिव एंड रिकॉर्डेड द ऑफिशियल नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान Approximately 5,000 songs for 583 released films. Career dekha jaye to 52 films mein inhone acting ki thi Noor Jahan madam ne 17 as a child artist. Aur jahan pe acting ki thi Yamla Jatt
विद प्राण. प्राण जी के साथ जब एक्टिंग की थी, शी वॉज अ लिटिल गर्ल एंड ऑब्वियसली शी हैड टू बी स्टैंडिंग ऑन कपल ऑफ ब्रिक्स टू मैच द हाइट विद प्राण साहब. जीनत फिल्म, अनमोल घड़ी, जुगनू, मिर्जा साहिबान वॉज विद त्रिलोक कपूर, दैट्स अ ब्रदर ऑफ पृथ्वीराज कपूर. फिर पाकिस्तान चले गए.

0: मैं अनमोल घड़ी एंड वी आर रिमेम्बरिंग मैडम नूरजहां. एंजॉय दिस आवर विद मी बाली ब्रह्मभट्ट आपकी खिदमत में.
1: Brought to you by Derry Valley. Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.

0: गुलाम हैदर ने ये कंपोज किया फिल्म खानदान 1942 की फिल्म एंड डीएन मदहोक ने लिखा वी आर एंजॉयिंग Noorjahan songs.
1: Classic Throwback is brought to you by Leica Gold 2. Bollywood classics non-stop on the new Leica Gold 2. Available at LeicaRadio.com, via Alexa, or by using our Leica Radio mobile app.

इतनी खूबसूरत आवाज को डिस्टर्ब करना पाप है। कैदी फिल्म, पाकिस्तानी फिल्म, रशीद अत्र का संगीत और फैज अहमद फैज की लिरिक्स। एंड दिस इज वन ऑफ योर फेवरेट्स, आई नो, फरीदा गुलाम अली जी, आपकी नजर।

0: गीत गाता चल. दिस वॉज अ ताराचंद बरजातीय फिल्म 1975 की. नेक्स्ट एन इवनिंग इन पेरिस, आफ्टर विच काजल इज गोना कम टू एंटरटेन यू टू द फुलेस्ट. नेटवर्क ब्रॉडकास्टिंग अक्रॉस द मिडलैंड्स. Enjoy drive time with Kajal. She's going to put all your favorite songs and she's smiling away because she had a successful, lovely Ganesh Pujan on the weekend. Thank you, Kajal.
1: Thank you.
0: And well done. Bali Brahmbhatt ka namaskar.

0: Mamster no Pani Puri ane Pani Puri no Pani.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स लागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए फॉरन का फोन मिलाएं 0208839080 और विजिट ragasan.com लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन
3: 40 मिलियन पीपल लिसन टू कमर्शियल रेडियो ईच week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
4: From Dudley to Aston, Leica Radio is now broadcasting throughout Birmingham on full-scale DAB. This is Leica Radio Midlands. This is the Leica Radio Network, broadcasting across the...
5: Hi guys, this is Arbaaz Khan.
6: This is Alka Yagnik.
7: Hey everyone, this is Arman Malik here.
8: Hi guys, this is Taha Shabadusha.
9: Hello, namaskar, adab. I'm Shah Rukh Khan.
10: Hi, this is Akshay Kumar and you're listening to Leica Radio.
11: Leica Radio.
4: Leica Radio. Pay close attention and name the film of this cracker classic.